0: कि एक समय तानव बह गए बाल में जो माता से तो फल नो बोले अफेट जो रहता साउदी बाकुंडा से नो पूजा बत्ती में पिसल
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.